साहिब श्री गुरु रामदास पातशाह जी का शब्द है। शब्द दे आरंभ दियां पंक्तियां हन, सोरठ ताम सुहावनी जां हर नाम टंडोले। राग भी सोरठ है। सोरठ गायन करण दा लाभ तद ही है जे गुरबाणी नूं राग विच गा के उस प्रभु दे नाम दी प्राप्ति लई उस नूं लभण दी कोशिश करे, उस दे नाम नूं टंडोलण दी खेचल करे, तां ही सोरठ गायन करन दा अते शब्द पढ़न दा फायदा है। सो आओ सारे राग सोरठ विच ए शब्द पातशाही चौथी तंत गुरु रामदास साहब जी का उचारिया हुआ शब्द सुन करो।

दरियाओ तू देहांध तू बिसियार तू धनी देह लेह एक तू दिगर को नहीं तू दाना तू बीना मैं विचार क्या करी नामे चे स्वामी बखसंद तू हरी हल्ले यारा खुशखबरी बल बल जाओ हाँ बल बल जाओ नेकी तेरी बिगारी आले तेरा नाओ रहाओ कुजा आमद कुजा रफती कुजा मेरवई द्वारका नगरी रास बगोई खूब तेरी पगरी मीठे तेरे बोल द्वारका नगरी काहे के मगोल चंदी हजार आलम एक लखाना हम चिनी पातशाह सांवले बरना आसपात गाजपात नर नरेंद्र नामे के स्वामी मीर मुकंद एक ओंकार सतनाम करता पुरख निरभउ निरवैर अकाल मूर्त अजूनी सह भंगुर प्रसाद राग सुहे

दूध कर्म फुन सुरत समायण होए निराश जमावो जपो ता एको नामा अवर निराफल कामा रहाओ। एहो मनी टी हाथ करो फुन नेत्रो नींद ना आवे रसना नाम जपो तब मथिया इन बदे अमृत पावो। मन संपटो जित सत सरन आवन भावन पाती तृप्त करे पूजा प्राण सेवक जे सेवे इन बिद साहेब रवत रह। कहिंदे कहे कहे कह जावे तुम सरे अवर ना कोई भगत हीन नानक जन जंपै हौसा लाही सच्चा सोई। सूही महला पहला कर दूजा एको अंकार सतगुर प्रसाद। अंतर वसै ना बाहर जाए अमृत छोट काहे बिख खाए ऐसा ज्ञान जपो मन मेरे होवो चक्र साचे केरे रहाओ। ज्ञान ध्यान सब कोई रवै बंधन बांधया सब जग पवै सेवा करे सो चाकर होए जल थल महियल रव रहया सोए। हम नहीं चंगे बुरा नहीं कोए प्रणवत नानक तारे सोए। सूही महला पहला कर शेवा एक ओंकार सतगुर प्रसाद। उज्जल कहा चिलकना कोटम कर लड़ी मस तोतिया झूठ ना उतरै जे सो तोवा तिस। सज्जन सेई नाल मैं चल दिया नाल चलान जिथे लेखा मंगिया तिथे खड़े दिसन रहाओ। कोठे मंडप माड़ियां पासो चितवियां हां टठियां कम ना आवनी विचों सखणियां हां। बग्गा बग्गे कपड़े तीर्थ मंज वसन कुटकुट जियां खावणे बग्गे ना कई अन्न। सिमल रुख शरीर मैं जन देख भुलन से फल कम ना आवनी ते गुण मैं तन हन। अंदले पार उठाया डूगर वाट बहुत अखी लोड़ी ना लहा हौ चढ़ लंगा कित। चाकरियां चंगे आईया अवर स्याण पकित नानक नाम संभाल तू बद्दा छुट्टै जित। सूही महला पहला जप तप का बंद बेड़ला जित लंगै वहेला ना सरवर ना उछलै ऐसा पंथ सुहेला। तेरा एको नाम जीठड़ा रत्ता मेरा चोला सद रंग ढोला रहाओ। साजन चले प्यारिया क्यों मेला होई जे गुण होवै गंठड़ी है मेलेगा सोई। मिलिया होए ना विछड़ै जे मिलिया होई आवा गाउण निवारिया है साचा सोई। हाँ मैं मारने वारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पाया सह के अमृत बोला। नानक कह सहेलियो सौ खरा प्यारा हम सह केरियां दासियां साचा खसम हमारा। सूही महला पहला जिन कौ पांडे पाओ तिना सवार सी सुखी करै पसाओ दुख विसार सी। सहसा मूले नाहे सर पर तार सी इतना मिलिया गुरे आए जिन कौ लिखिया। अमृत हर का नाव देवे दिखिया छिड़ै जे मिलिया होई आवा गाउण निवारिया है साचा सोई। हाँ मैं मार निवारिया सीता है चोला गुरबचनी फल पा।

जोग ना खिंथा जोग ना डंड जोग ना पसम चढ़ाई है जोग ना मुंदी मूड मुंडाया जोग ना सिंघी वाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है गली जोग ना होई एक दृष्ट कर समसर जाने जोगी कही है सोई रहाओ जोग ना बाहर मड़ी मसाणी जोग ना ताड़ी लाई है जोग ना देद संतर पवे जोग ना तीर्थ नाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है सदगुर भेट ता सहसा टूट तावत वर्ज रहाई है निजर चर सहे तुन लागे कर ही परचा पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत इव पाई है नानक जीवत्या मर रही है ऐसा जो कमाई है वाजे बाजो सिंगी वाजे तौ निरपो पद पाई है अंजन माहे निरंजन रही है जोग जुगत तौ पाई है।

मेरे लाल जियो तेरा अंत ना जाना, तू जलथल मैयर भरपुर लीना, तू आपे सर्ब समाना राओ। मन तारा जी चित तोला, तेरी सेव शराब कमावा, कट ही पीतर सो सह तोली, इन विद चित रहावा। आपे कंडा तोल तोरा जी, आपे तोलन हारा, आपे देखा आपे बूझे, आपे है मणजारा। अंदला नीच जात परदेसी, खिन आवै तिल जावै, ता की संगत नानक रहिंदा, क्यों कर मूड़ा पावै। राग सुही महला चौथा, कर पहला एको अंकार, सतगुर प्रसाद मन राम नाम आराध्या, गुर शब्द गुरु गुर के, सब इच्छा मन तन पूरिया, सब चूका डर जम के। मेरे मन गुण गावो राम नाम हर के, गुर तुठे मन पर बोधया, हर पिया रस गट के रहाओ। सतसंगति उत्तम सतगुर केरी, गुण गावे हर प्रभ के, हर कृपा तार मिलो सतसंगत, हम धोवै पग जन के। राम नाम सब है राम नामा, रस गुरमत रस रस के, हर अमृत हर जल पाया, सब लाथी तिस तिस के।

हमरी जात पात गुर सतगुरु हम वेचो सिर गुर के जन नानक नाम परयो गुर चेला गुर राखो ला जन के सुही महला चौथा हर हर नाम भजो पुरखोत्तम सब बिनसे दालद दलगा पहु जन्म मरना मेट्यो गुर सबदी हर अस्त्र सेव सुख समगा मेरे मन भज राम नाम अत पिरगा मैं मंतन अर्प धरियो गुरिया गै सिर वेच लियो मुल महंगा राओ नरपत राजे रंग रस माने बिन नामे पकड़ खड़े सब कलगा धर्म राय सिर डंड लगाना फिर पछताने हथ फलगा हर राख राख जन किरम तुम्हारे सरनागत पुरख प्रत पलगा दर्शन संत देहो सुख पावे प्रभ लोच पूर जन तुमगा तुम समरथ पुरख वड्डे प्रभ स्वामी मोको कीजै दान हर निमगा जन नानक नाम मिले सुख पावे हम नाम विटाऊ सद घुमगा सूही महला चौथा हर नामा हर रंग है हर रंग मजीठा रंग गुर तुठे हर रंग चाड़िया फिर बहु न हो भी भंग मेरे मानो हर राम नाम कर रंग गुर तुठे हर उपदेसिया हर पेटिया राओ निसंग रहाओ मुंद एणी मन मुखी फिर आवन जाना अंग हर प्रभ चेतना आयो मन दूजा पाओ सहलंग हम मैल भरे दुहचारिया हर राखो अंगी अंग गुर अमृत सर नवलाया सब लाथे किलवख पंग हर दीना दीन दयाल प्रभ सतसंगत मेलो संग मिल संगत हर रंग पाया जन नानक मन तन रंग सूही महला चौथा हर हर करै नित कपट कुमावै हिरदा सुध ना होई आन दिन कर्म करै बहु तेरे सुपने सुख ना होई ज्ञानी गुरबिन भगत ना होई पूरा रंग कदे ना चढ़ै जे लोचै सब कोई रहाओ जप तप संयम वर्त करे पूजा मन मुख रोग ना जाई अंतर रोग महा अभिमाना दूजे पाए खुआई बाहर पेख बहुत चितराई मनवा दे दिस्तावे हम मैं ब्यापिया शब्द ना चीने फिर जूनी आवे नानक नजर करे सो बूझे।